मंच को सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।

0: জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি?
1: ভারতের এই যে যোগ দিবস যা এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে, সেই যোগ দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
2: মহাশয়। His unwavering commitment towards preventive health care, holistic living, and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें।
3: मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री आरएन रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा।

ये अद्भुत पहल है। स्वच्छता से स्वागत, स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant

lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं।

0: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चोख के खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा दाड़िये पोड़ून। हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे।
1: आज के हमारा चालन क्रियार माध्यम अधिवेशन टी शुरू करब,
0: जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है, उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन शुरू उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे, गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे।
1: घर सामने पीछे नहीं कौड़ा,
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखे,
1: दुटो पायर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखून,
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दुटो हाथ के कोमरे ऊपरे रखून।
0: पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास।
1: प्रथम अभ्यास घर सामने एवं पीछे झुकान,
0: श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा एवं घर के सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए,
1: सांस नीते नीते पीछे दिखे माथा झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सांस नीते नीते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे।
1: यही अभ्यास पुनरावृत्ति करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास।
1: परवर्ती अभ्यास दाने एवं बामे कात करार,
0: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाई के और झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा डांडी के कात करान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे,
1: बाम दिख थे अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है, और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास,
1: घर डाने एवं बामे घुरान और अभ्यास।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते अपना घर डान दिखे घुरान,
0: और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे।
1: यही अभ्यास थी,
0: श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए, और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर श्वास पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का,
1: परवर्ती अभ्यास घर घोरानोर।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे,
1: सांस नीते नीते घोड़ी कांटार दिखे घूर्णन दिन,
0: और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे नियास।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है,

0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार
1: विपरीत दिख थे क्या अनुशूलन की अभ्यास करून
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे,
1: कांध एवं बाहुर आंदोलन।
0: जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए,
1: सांस नीते नीते दोनों हाथ के ऊपर नियासुन।
0: दोनों हाथों को हथेलिया बाहर की तरफ रहना है,
1: दोनों हाथेर तालु बाहर दिखे।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूर्ण श्वास प्रश्वास पर, धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए हथेलिया का, और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए,
1: आस्ते आस्ते दोनों कांध के हाथेर सामने
0: और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए,
1: दोनों कोनों के भाज करून,
0: दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए,
1: दोनों कोनों के छाती सामने नियासुन
0: और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए, श्वास प्रश्वास के साथ
1: धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोड़ान।
0: पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए,
1: सामान्य अवस्था ही फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए,
1: दोनों पैर माझखाने कांधेर समान दूरत्व बजाय रखून,
0: दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर,
1: दोनों हाथ के कांधेर समान सामने,
0: हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे,
1: हाथेर दोनों तालु सामने दिखे।
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के दान दिखे घोड़ान।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे,
1: विपरीत दिशा थे क्यों अपनी अभ्यास करून
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास दाई तरफ, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास हाटूर संचालन।
0: श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए,
1: सांस नीते नीते हाथ के छाती सामने नियासुन,
0: हथेली को रुक नीचे की ओर रहना है,
1: हाथेर तालु नीचे दिखे।
0: श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथों के भाज करून,
0: कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन
0: और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे,
1: एक बार हमने आसन अभ्यास शुरू कर दो।

0: पहला अभ्यास ताड़ासन, प्रथम अभ्यास ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे, दोनों पैर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखून। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। दोनों हाथ के छातिर सामने कांधे समान न्यासून। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए, दोनों हाथ के जोड़ो करो और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। पायलट दिखे घूड़िए दिन हथेर तालू और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। सांस निते निते हाथों पूरे दिखे, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास, संभव होले गोड़ाली रोपोर संतुलन संतुलन बनाने का प्रयास। इस और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। सांस छरते छरते हाथ नीचे और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए, आराम करो। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। परवर्ती अभ्यास पादहस्तासन। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए, दोनों पैर माझखाने 4 इंची दूरत्व बचाए दिन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए, दोनों हाथ के सामने थे के माथा रोपुर निये जान और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। सांस छाड़ते छाड़ते कोमोर थे के झोंकान। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास, दोनों हाथ के पायर पास स्थापित करो और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास, दोनों हाथों के सोजा करने का प्रयास करो। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए। सांस नीते नीते फिर सुन और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए, आराम करो। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। परवर्ती अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखिए, दोनों हाथ के कोमड़े रोपोर रखून और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। धीरे धीरे अपनर बॉडी के पिछन दिखे झोंका। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है, ये अनुशीलन समय चोख दुटो खोला थकबे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर सुन और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। परवर्ती अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए, दोनों पैर माझखाने 3 से 4 फीट दूरत्व बजाय रखून। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए, दोनों हाथ के कांधे समांतराल ले आसुन। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए, डान पैर पाता डान देके घुड़िए दिन और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान देके झुकिए दिन। राइट हैंड दाएं पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करे, अपना डान हाथ पायर का से स्थापित करो और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए। विशाल का आकाशेर दिखे देखार चेष्टा करो एवं ये अवस्थाएं बजाय थकून और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए, स्वाभाविक अवस्थाएं फिर आसो। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाय लेफ्ट का बाय पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बनी रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसन।
0: अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: एवर हमारा बोसे कड़ा आसन को अभ्यास करो।
0: धीरे धीरे से बैठ जाइए,
1: नीचे जाएगा बोसे पड़ो।
0: पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए,
1: दोनों पाके सामने दिखे सोजा करो।
0: दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए,
1: दोनों हाथ के नितंब

0: आज के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए।
1: दुटो पाके बाहर दिखे छोड़िए, शिथिल दंडासन में विश्राम करून।
0: अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास वक्रासन।
0: शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास, सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखें।
1: डान हाथों के भाज करून बाम पैर का छे।
0: दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के पिछोने दिखे स्थापित करून।
0: बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास।
1: बाम हाथ दिए उल्टपा धोरण चेष्टा करून
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते घर डान दिखे घोड़न
0: और स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ ये अवस्था बजाय थकून
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैर पे भी, पैरों से भी हम करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास उल्टो पाथ है।
0: बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: एवं हमरा पेटे ऊपर भर दिए आसन शुरू करबो।
0: दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए।
1: दंडासन स्थिति थे के पेटे ऊपर सुए पड़ून।
0: सिर आगे मंच की तरफ रहे,
1: माथा स्टेजर दिखे थक पे,
0: पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर रखे।
1: दोनों पैर माझखाने एक फुट दूरत्व बजाय रखून।
0: दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के बाम हाथों पर स्थापित करो।
0: बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें।
1: डान एवं बाम गाल स्थापित करून हाथे ऊपर।
0: इसको हम मकरासन कहते हैं।
1: लेकिन मकरासन बोला है,
0: यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए।
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन
0: और धीरे से श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे कीजिए।
1: सांस नीते नीते सामने रहते के हाथ नियासन
0: और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए।
1: दोनों हाथ के छाती सामने नियासन
0: और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए।
1: सांस नीते नीते सूरज के बाकन और चेष्टा करो।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए।
1: ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो।
0: यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए।
1: मकरासन में विश्राम करूँ।

0: अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। परवर्ती आसन शलभासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए।
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नहीं आसन।
0: दोनों हाथों को जांगों के पास लाइए।
1: दुटो हाथ के जांगेर पास है राखून।
0: और दोनों हथेलियां जमीन पर जमीन की तरफ रखे। टोड़ी को जमीन से लगा कर रखे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए।
1: सांस नीते नीते दुटो पाके ऊपर तुलार चेष्टा करो।
0: प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का।
1: प्रयास करूं कि दुटो पा सोजा थाके।
0: और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए।
1: मकरासन में आराम करो।
0: अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: चीत हुए करा आसनों का अभ्यास करो।
0: बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए।
1: पीठे ऊपर सोए पड़ो।
0: पहला अभ्यास सेतु बंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए।
1: दुटो पाके एक संगे न्यासन।
0: और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए।
1: दुटो पाके भाज करते करते नितंबेर काछे न्यासन।
0: दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास।
1: दुटो हाथ दिए गोड़ाली धरार चेष्टा करो।
0: श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास।
1: सांस नीते नीते अपना शरीर दिए ब्रिजेर आकार दिन।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए। और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन।
1: परवर्ती अभ्यास उत्थान पादासन।
0: दोनों पैरों को मिलाइए।
1: दुटो पाके एक संगे नहीं आसन।
0: हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए। हथेलियों को जमीन पर रखे। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए। उठाकर कोण बनाइए।
1: सांस नीते नीते पायर द्वारा 45 डिग्री कोण दिन।
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास बजाय रखो।
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए। और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन।
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध हलासन।
0: दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए।
1: सांस नीते नीते पार 90 डिग्री कोणे न्यासन।
0: प्रयास करिए घुटने सीधा रहे।
1: चेष्टा करून अपना दुटो हाटो सोजा थाके।
0: और सामान्य श्वास प्रश्वास वर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए।
1: दुटो हाथ के हमरा लॉक करबो दुटो पायर माझखाने।
0: श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास। और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास।
1: सांस छाड़ते छाड़ते चिबुक टिकाने की चेष्टा करबो।
0: और इस अवस्थे में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए। और हाथों को बगल में रखिए। और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है। और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला

0: दूर रखिए, दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए।
1: दुटो पायर मध्ये दूरत्व बजाय रखुन एवं दुटो हाथेर मध्येओ दूरत्व बजाय रखुन।
0: हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें,
1: हाथेर तालु आकाशेर दिखे
0: और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए, चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें, शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास।

0: धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखे। शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाएं या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखे। शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे।
1: पूर्ववर्ती अभ्यास कपालभाति।
0: जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
1: जी कोनो ध्यान मुद्राएं बसुन, जेमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन, एवं दुटो चोख के आलतो करे बंद करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए।

0: गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाट सोजा रखें एवं चोख बंद रखें।
0: बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए।
1: बाम हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, बाम हाथों पर रखूं
0: और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके
1: डान हाथ दिए प्राणायाम मुद्रा बनाने और चेष्टा करूं।
0: धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम।
0: दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, हाथों पर रखो।
0: जीभ को बाहर निकालिए।

0: और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए।
1: जीभ बाहरे बेर करे दो पास दिए पाखी टूटेर मतो आकृति दिन
0: और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता तनाव अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
0: षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, अंगूठे को कान को अंगूठे से कान को बंद कीजिए, सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें,
1: वृद्धांगुली दिए कान एवं बाकी अंगुल दिए,
0: नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए।

0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखिए। इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कीजिए।
1: এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব। দুটো চোখ বন্ধ করুন।
0: কমর গর্দন সিধা রাখে। দোনোঁ হাতোঁ সে জ্ঞান মুদ্রা ইয়া ধ্যান মুদ্রা কা ধারণ কিজিয়ে।
1: দুটো হাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন।
0: কন্ধো কো শিথিল কিজিয়ে। আপনি শ্বাস পর পুরা ধ্যান কেন্দ্রিত কিজিয়ে। ধীমে আর গহরা শ্বাস লিজিয়ে আর ধীমা আর গহরা শ্বাস ছোড়িয়ে। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे। हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित।

और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में।

धुबुरी जिलानि करुंसा करुंसुआ फेरांको गय मार्खे वाती वावी मानु हिनै हजाक्लाय जाखा आगरतला ताय आबुने गानागनि आमचा यो मिया फुंगनि सिमि तिनी आइचुक दरा वाती युवाखा चीसा मिलीमीटर आगरतला व तिनी आइचुक खामनि तुमरी तंगमनि नुचिबा डिग्री सेल्सियस सालनि साकानि तुमरी तंगमानो थामचि थाम डिग्री नि गानागनि ককবরক ভাই ককতুমা পরিমং তাবগনি বাগে অরণ পাইখা উনি ককবরক ককতুমা আওয়াইঙ্গানো তিনি সানজা দামসনি তামুই সতী বৃজি বাবা

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: control. Yes, 5-star safety rating. Yes, yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakhs. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 40,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: आप ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भी पहर भाई अनि समोरन पाखा
1: मेले खाना तो खाना भी निजापो
2: ई
1: खुमबा नंगनी निजापो साम थाने सिरंगे पाखा
0: अन काकान थाने
1: कनो गोली पांदर गम हाय ते खाना तो खा रसाप नंग सिरंग फाजे दो हाने हाय पीतर नि खुक्ते ते थासे कोक तांग खाना लायानो
3: आनी कोक तांग नि मुंग का मास्टर

0: 아니 꺽당 어전 빠켜
1: 블랙 하나 떡 하나 빈 꺽당 승 꺽당 릿사풍 크나 라이케바 반다 까자라 파리 승 따보 꺼트마 가이세 크나 라이네냐 승 따보 꺼트마 사나이 수전 수전이 꺼트마니 몽따마
2: 꾸밀 바이 무크라니
1: 꾸밀 바이 무크라니 너니나 꺼트마노 크나 떡 사이 크나르라
2: 잘자한다 무크라마사 Tiru kungana ni jamuk pangsawa Dili na bo jamuk chansai chongponta Bo azaga jamuk chane ni bini bagay kuno biyal kuroi Bo aro dili na tongkhok zagay chansawo Hanke kumbir masa bai bo chalcha yar khalake hanta
1: Hanke mkhara bai kumbir yar khalake hanta Hanke bini ulo khanta mkha
2: Hanke bo kumbir na khakakay jamuk chansar khapo Hanke kumbir bo bin bihing na chansar khapo hanta
1: कुंबीर बिन बिहिंग नो जामक तो तलांगई सारे क्या हंता
2: इनके आ बिन बिहिंग माखना थोक जागा पो इनके बिन बिहिंग सिंगा पो नंबर ने आसे जामक को तीर तू तू फैशा फैशा ने सिंगा पो इनके सागा पो कुंबीर आनी यार चासारो छगंता इनके आनी नी यार ने बखा वाकर थोक जोंखना ले जामक सासे थोके बिन बखा माखन थोक जोंखना बिन बखानानि किसासार फाजिन छागांता
1: आपुके कुंबिर जे बुरै बिन बसायनो साका हंता बिन बखासानम जागे
2: ए
1: कलाखे
2: बरकनै मखरानि बखानो जान बागै पुदि जावलायखापो हंके बबिन बसायनो दागिराका हंता के मखरानो बसायखापो ओ यार यार नों तिनि सिनोगस मा थांगनाय
1: आपुके मखरानो बिन यार सायकाता
2: ए हंके मखरा माखन तंगथ जागापो हंके बो बिनि फिगुंगो गबागै थांनाय जाबो हंके थांते थांते
1: बिनि फिगुंगो कासरै आफरके तेगे जारो तलाङै थाका हंता
2: कुंबीर वान सुगु चंगफुरु नंग तिनि यगली आनि वान सुगु चंग माखन बो सायमेनै मखरा बो आतुमसा प्लान फाजा कपो हंके
1: आफरके कुंबीर सामानो मखरा आतुमसा मखाव सोंगन्या का हंता
2: ओ यार यार आनि बखाबो ओ बुफांग बेदेगोसु बेदिके बिजक्सि बिले थोतस माना ले फिगे नाइन थांगै गपो
1: आपरके आ मखरा बुदिकार होय बिन बखा बुफां छागाव बेरि काय फिगे आनि छागा हंता गलखे
2: हिके थांगै सगै के फोर के बाहर थांगाबा नंगा आनि बखाना चानाय बुटो आसा ताबुक्सारि आनि कथमा अन बायखा
1: बिले खना क त खाना बिन कथमा नरा कथमा खानाय ताम बुसिखा सायदामा मायाना बरक यार किसिं खालाय तमान बिसिंगसे कुंबिर हंगा हंगे बिन बिहिन गबाय बिन बखाना जानम होजागैसे बिन यार न थकायना नायमानि आफुरके मखरा सायमानै थकगै मालायाता कनरक जतन दल कायसा तंगलाय पुरो यार किसिं तंगलाय पुरो ग माके केमने के बता फेमलक दि ता केमने के बता तालता सादि सायमांका सिं सिनि लांगमा रगो थिना रगो सिं काहामंग मांगला सायमांका दा बलेखन हमबाय बनो बिन कथमा सायखनार मानि बागै फायदै के सोंताबो रसाब मुंखनाना लायना सोंना ताबो रसाब खनाना नाय खुमबोय बाय खुमबा
3: आइजु

0: बाकी खाएंगे एकदम मिनी खाकरा कंगो तो योगा माने का मिनी बखा निने वांसंग माने फ्लेक्सिबल खाई माने तार पर ऐसे बॉडी ने क्षेत्र आवने इफेक्ट हो जाए निनी मेंटलिटी जगह नंग फ्लेक्सिबल लगा ना शा अनेक किचनो एक्सेप्टेंस खाई माना ना आशा मयो निनी बॉडी वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल लग थामो जोकन चं प्रैक्टिस खाई कहेंगे
1: प्रैक्टिस खाला क्या हंगाके अब तरह तरह के खाले मन तुम उमर उमर उंजक रोबो खाला ना हंगाके अब हाया जे निने बॉडी नो नंग मूव खाला ना खाला ना नंगा अब हाया बा बर वो बिस्ना

0: खबर तक खुते भी खुचों नौ खुनाई तुम्हें एफएम उज्जैन तो सारा सपन दो है के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ और तीन नारों ए पंद्रह सिंह स्टूडियो ने जोर को तब दाम साथ में शोधी दौक तमु मोफ्ली थम्सी चुको खबर तक खुते भी खुचों नौ खुनाई तुमको तीन नारों ए पंद्रह तुमको मुंगनां युगा फरंगनाई डॉक्टर राखी देव ब्रह्मा आप कॉलर तुमको खरोक्षा करने ने हेलो हेलो हेलो कोक दुगो सावतमनी फिया काडंग थांगा कोकरे हेलो
1: हेलो
0: दिबरका हम लामसगो
1: आंग्यांग कुटनासि कोनि बुपे सेपोर मासा हारि थों
0: ए सादे ताखो ताम समु तो
1: नि तो यो आंग तो खनाय तमनि जे यो वान तो हालाय बनि को आंग बकाय जे सिंग नमो समनि गासि थों दो सिने नारवाय डाक्टर न योगा

ते खरक्सा साबुन खाना छा दी खाऊ ताकुक ते बुकुक संग नरम साइज दी ते खरक्सा साबुन खाना ते खरक्सा साबुन खाना सकांग दे ब्रह्मा ते खरक्सा के सकांग दे ब्रह्मा खाऊ ताकुक ते बुकुक संग तमुन बेसबो ते तांग सर साबुन नरम बागे

Tại bố khúc xong phải đi yêu tao bức sự dỗ là nhiều sát lại anh tâm tổng này lấy anh kì chào hạt tôi nữa chúng ta chúng ta hạt tôi nữa chúng ta chúng ta âm sinh lúc kia hát thế bộ tin em phil chi này hay ung yoga sal pha lại giác khả hát thế này chiếc là bà bay tại thằng này không này sát thằng má bay bà hấp anh này hay ung bàn khola này phun ung má hola जुगाले जा हासे बेरम ने अ योगा साल नो चेंगे रेखा मंत्र का प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब वर्षा का जरा रग योगा खलाई के शक्ते खा काम तंग आरो कोबुने बिसिं मानजका थंग मंत्री तिंकुराय एमएलए मीनारानी सरकार एमएलए राम राम प्रसाद पाल ताय हासे हापन निजो दाजोरा नायखुने तांग अक्रार नीड यूजी निशाय निशिदक बिशिनी आमचुकमु फिरमा तिनि नाजागितंग नेशनल टेस्ट एजेंसी ओ आमचुकमु नाफिना निबागै तियार उंथानि मिया हाक्तर गनांगै मक ड्रिल काइसा संसा जाका हाक्तनि जुदा जुदा आमचुकमु केन्द्र व संसा जाक मक ड्रिल ओ खरक नै रासाय बासि सायनि बकबां नायमथां सेबुक मानजाका आमचुकमु न स्राय स्राय ताय काहाम करंखि पाइरिना बागै कबां मा बेरेमनि नाई मथन या फिर रामजखा केन्द्र नि पंचायत राज कक संग दिल्ली कतालो निर्भय फान टांग बतंग नि बिसिं निर्भय चेतना न तुई सालताम नि फुरंग मुंग छिबि जुगाले जखा मेलो कक नार थानी मेलो कक संग लाइन बखाक तुई निर्भय चेतना फुरंग मुंग मॉड्यूल चेंग र जखा कक संग लाइन साका निर्भय चेतना अंखा बरि रक्नि नाई मथांग ताई बरि रक्नि जुदा जुदा बाबाई रक्

हाय उमता महिनवा ने कॉक लाइक है इमांगो आनोता महिने साई कलांखा ओ ओ मताई रो किसा आनो नाइकलाई जाबा से दी कुबई कुबई ना मताई रो आनो नाइकलाई माने तो खाई बा इमांग ने कॉक नो मुख थांगोंगा ने खना ना आंग मारे संगे बोलता ना माथांग सिनाई बोलता ना थांगते से थांग फांगजा नाइतो भी मातो बसिनाई

वो इश्क ही क्या जो सिर्फ पास रहने से पूरा हो। मोहब्बत तो वो है जो दूरियों में भी महसूस हो। तुम मेरी किस्मत में हो या ना हो ये नहीं जानता मैं, मगर तेरा नाम लेते ही दिल को सुकून जरूर हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।

0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: की सहायता डेली लॉके ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

0: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश,

पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: নমস্কার নমস্কার, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা?
1: হ্যালো,
0: আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? না, শোনা যাচ্ছে না, একটু যান্ত্রিক গোলযোগ রয়েছে, কেননা এই মুহূর্তে একটু প্রকৃতিও ডালমাটাল পরিবেশে রয়েছে, তাই হয়তো বা। তো যাই হোক শ্রোতা বন্ধু, কথা বলবো। সঙ্গে থাকুন, একটা বিজ্ঞাপনের বিরতির পর আবার রেশমিতা রায়ের সঙ্গে কথা বলছি।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहां आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं,
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त

0: और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
1: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
3: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।